0: इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
1: जी।
2: अच्छा,
0: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
1: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
2: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
0: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
1: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
2: अच्छा।
1: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
2: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
2: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
2: बाय
0: बाय।
2: ओके

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली है।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
3: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडु नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा,
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं,

0: दियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
0: अच्छा।
1: और इडुक्की के बाद इसमें नीरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता यह भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए यह परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिरामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: बलियत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की? और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी

0: पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें आज से और अभी से हम तो तैयार हैं आप भी तैयार हैं ना
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा लेकिन श्रोताओं अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए
1: नमस्कार
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: सुन ले प्रायोजित कार्यक्रमों NCERT

0: ନିନ୍ଦାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ କେବେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, କାରଣ ସଫଳତା ପାଇଗଲା ପରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ତାର ମତ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अस्थि भितरे मज्जा ता उपरे मेद ता उपरे मांस भितरे रुधिर घोड़ेबाकु चर्म एवं रोम मज्जा मध्यरे व्योम ए सप्त धातु प्राणी जीवनर मूल हेतु 72,000 नाड़ी हृदय पद्म को बेढ़ीचे ता मध्यरे रहे प्राण अवनी उदक अनल पवन ओ आकाश एई पंचभूतरे गढ़ा शरीर हेउचे विष्णुंकर भजन मंदिर एई पंचभूत छड़ा मन महत आउ अहंकार मिसी अष्टगुणरे आवृत ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक इंद्रिय माने भूत आदि प्रभाव गुणयुक्त पुणि कल्पित अहंकारे आत्मा ओ मन समस्त विकारपूर्ण एहिपरि आत्ममायारे से खेलन्ते आत्मा को भिन्न भिन्न करी से प्रजापति बा ब्रह्म रूप धारण करते।

ट्यून करिछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकको दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र आउनु रहिछ आज आपनक सह आज एक जो नुआ सकाळ रे एवं रहिछ आज अनु सह मॉर्निंग अपडेट।

सो फ्रेंड्स बड़े बड़े ना आमे जदि निज महत्व जानी पारु ना सेथिरे भी रहिची भगवान कर किछि महत उद्देश्य ए जमिति देखंथु ना कस्तूरी मृग तारी नाभिरे रहिचे कस्तूरी किंतु से केबे भी जानी पारे नि जे ता से जो कस्तूरी रो बासना केउठि आसुचि एवं सेई बासनार मुहरे से चतुर्थिक परिभ्रमण करे हेले शेष पर्यंत जानी पारे ना जे कस्तूरी रो महक तारी मध्यरु आसुचि एवं अजाणत देहरे हो पछे से चारिआडे निजर महकरे महकाई दिए से जुआडे जाए तार बासनारे समस्ते महकी जाते कहिबार कथा हला बेले बेले भगवान एभली ही करी थांती किते अपूर्व सृष्टि अपूर्व चिंतन देखंतु आम भितरे रहिचे महत्व रहिचे हेले सेटा आमे जानी पारुने आमे को छाड़िकी समस्ते जानुछंती जे आमे आम भितरे किछि भल गुण अछि आम भितरे किछि महत जिनस अछि जोति पई कि आम द्वारा किछि भल काम हेइ पारुछि कारण मनीष जेतेबेले जानी नथाय से पर्यंत त ठीक अछि किंतु जेतेबेले से जानी पारे ता द्वारा एभली काम हेइ पारुछि त बेले बेले कोन होय मनरे कोन आसे गर्व आसे अहंकार आसे जहाँकि मनीषर से जो महत गुणटी को धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे लुप्त कर दिए से हुए तो कस्तूरी मृग को केबे भी भगवान जानवाक दिखती तारी नाभिरे रही कस्तूरी से जो भगवान महत उद्देश्य अच्छे बुझेक चेष्टा करूँ एमती केवे निराश हूँ जो मुस्तों सहित भल कर सहित समस्ते कहीं खराब कर ସେମିତି ଜମା ବି ଭାବନ୍ତୁନି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ସେଭଳି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂତନ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ସମୟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଠନର ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଢ଼ାଯାଏ ନା ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ କଷ୍ଟ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସହନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଯେତେବେଳେ ହୀରା ବାହାରେ ଆଉ ହୀରାକୁ ପଲିଶ କରାଯାଏ ଯେମିତି ଚମକି ଉଠେ ହୀରା ସେମିତି ଆପଣ ବି ଦିନେ ହୀରା ପରି ଚମକି ଉଠିବେ।

0: आजी समस्ते तांकु प्यारेलाल डाकु छंती काहे कि ना जेबेठु से सोलर पैनल लगई छंती सेबेठु मीटर कंटा भी निश्चिंत रे सोइछि आउ दयानिधि सामंत
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजोड़ी योजना जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु पीएम

एक नई सुबह, एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक बार फिर आसमां छूने की कोशिश, कामयाब होने की चाहत, सुबह की पहली किरण के साथ। किरण हुंतु शांति हुंतु पूजा की आराधना करिवार अछि आमको गोटे केक स्टार्ट फॉर अ न्यू मॉर्निंग। तेणु समस्त निज तरफ रु हैप्पीली कहतु शुभ सकाळ दिल से दिल तक।

हे साथी ट्यून कर चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र अनु रही छे आजी सुबह सकाळ को नहीं आओ आजी सुबह सकाळ रे रही छे बॉलीवुड बर्थडे रे अभिनेत्री पद्मिनी कर शुभ जन्मदिन जणे भारत नाट्य नृत्यांगना तथा महान अभिनेत्री खासकर दक्षिण भारतीय सिनेमारे तांकर आधिपत्य अनेक दिन जाए रही अनेक हिंदी चलचित्र काम कर बेस भल कम कर प्रमुख हिंदी चलचित्र जिस देश में गंगा बहती है मुगले आजम एवं काजल

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान

0: बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सो फ्रेंड्स, एठी रखुछि आज सकाळर प्रश्न। आजर प्रश्न हला जे पद्मिनी से मात्र 16 वर्ष बयसरे निज सिने क्यारियर आरंभ करिथिले, तबे से हुए तो साउथ इंडियन एक्ट्रेस थिले, किंतु गोटे हिंदी फिल्म रु आज डांसर से निज सिने क्यारियर आरंभ करिथिले। आ आपनको पई प्रश्नटी हला से फिल्म रो नाटी कोन। आउ थरे कहि रखुछि आज सकाळर प्रश्न, एक्ट्रेस पद्मिनी मात्र 16 वर्ष बयसरे आज डांसर हिंदी सिनेमा रे डेब्यू करथिले, एवं से डेब्यू फिल्म रो नाटी कोन। टाइप करंतु एफएमआरसी स्पेस दे निज आंसर लिखंतु, स्पेस दे निज ना एवं ठिकाना निश्चय लिखंतु, स्पेस दे पठाइ दियंतु 09495963210 ए नंबर रे। 8895254200 रही छि हमर व्हाट्सएप नंबर, सेठी मध्य मेसेज करी देई परिबे उत्तर। आज सकाळ रजा प्रश्न पचरा गला, जे सठिक उत्तर लेखि प्रथमे पठेबे हमको सेही परिबे आज सकाळर श्रोता माने लेस्टर ऑफ द मॉर्निंग। सो डेरी कहिगे जल्दी जल्दी हम पाखो को लेखि पठांतु, आउ सुनु थांतु एमती हमको 100.4 आकाशवाणी एफएम बिनबो कटक रे, दिल से दिल तक।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों

0: का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
1: We signed this year a free trade agreement with Europe.
2: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
4: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
3: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक

0: फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे. भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite.

ये लाल गुलाब नहीं मेरे दिल का टुकड़ा है, ये लाल गुलाब नहीं मेरे दिल का टुकड़ा है, तेरे लिए धड़कता है बस, तेरा ही नाम पुकारता है।

और पुकारते हुए कहता है कि आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मेलोडी ओनली ऑन 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक विद म्यूजिक मित्रानु ऑफ कोर्स दिल से दिल तक।

तस्वीर मैंने मांगी थी, देखिए जरा, तस्वीर मैंने मांगी थी जरा तो देखिए, एक फूल उसने भेज दिया, वो भी लाल गुलाब का। गोलाप मनर कथा कहिबा पाई नाली गोलाप ठू अधिका किछि लागे ही नहीं, मन को एक्सप्रेस करिबा पाई मनर मनीष को लाल गोलाप टीए देबा ही जथेष्ट। जदि से प्रकृति रे आपनका मनर मनीष हेतिबो तबे निश्चय एक्सेप्ट करिबो, आउ जदि ना तबे हुए तो आगो के ही से लाल गोलाप अपेक्षा थी।

0: मिलते आवाज की पूजा सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं।
1: अरे बाप रे।
0: नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ सकाळ। केमती अछो प्रशांत?
0: मु बहुत भल अछि।
1: आज रे टॉपिक ऊपर कहबो
0: आपनकर आज आज शुभ मॉर्निंग रा चर्चा मां को ऊपर बहुत हृदय स्पर्शी थिला।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज आपण जे योग विषय रे रखिछन्ती मैम, देखंतु वास्तवता इया अछि जे हमकु किछि शारीरिक परिश्रम रे आवश्यकता। मु एटा भाबे आ शारीरिक परिश्रम त हि सुस्थता रे कारण।
1: हां, निहाती निहाती।
0: आ योग का पखरे समय अछि के योग माध्यम द्वारा करि परछन्ती, हमकु त परिश्रम द्वारा हि से सब करिया के पडुछि मैम।
1: ओके, त माने समय अभाव रे करि परछन्ती।
0: एमिति गोटे दिनछ परिश्रम, एमिति गोटे दिनछ प्राय 70-80% समस्या समाधान र मार्ग।
1: निश्चय निश्चय, जे शारीरिक परिश्रम करूथिबे निश्चित रूपे से माने सुस्थ रहिबे। तबे आपनकु समय अभाव रु हुए त आपन करि परु नांदी किछि कथा नै निश्चय। किंतु हां, योगर गोटे प्रभाव अछि। आउ जो माने आखा पाखरे आपनकर अछन्ते ना, समस्तक योग करबा पई तांको मोटिवेट करंतु। ठीक अछि?
0: आज्ञा आज्ञा मैम।
1: ओके, बहुत बहुत।
0: आउ आपनक शब्द रे एते आत्मीयता
1: सिंपल योग आपण ध्यान करंतु, प्राणायाम करंतु, गोटे पॉजिटिव एनर्जी जेतेबेळे मन भीतर आसिबो ना, ऑटोमेटिकली सब किछि पॉजिटिव हेई
0: चलिबो। आ गोटे चर्चा आपण करथिले कस्तुरी
1: मुर्गा।
0: आ से जे कस्तुरी मुर्गा आम भीतर भी समस्तक भीतर अछि।
1: निश्चय निश्चय निश्चय अछि।
0: आ से को समय पूर्वर चिन्हिया को अछि।
1: ठीक अछि, निश्चय निज को चिन्हंतु, निज को जानंतु, जीवन रो लक्ष्य भी सेया। रहिली, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: तो ये प्रशांत राजहंस कटक रु बहुत मीठा मीठा कथा कहते, बहुत भल लगे सहित कथा है। तबे से समय अभाव रु योग करि पर नंती, किंतु प्रॉमिस करिसंती योगर जो इफेक्ट अछि सेथिपैं कि समस्तंकु मोटिवेट करिवे योग करबा पई। तो निश्चित भाव इंस्पायर करंतु, आ एमते सुनथांतु हमको दिल से दिल तक।

0: ट्यून करिछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक म्यूजिक में त्रगणु रही आज आपणक साथी रे सकाळ रे तेबे आमे कथा होतले डायल इन लाइव चैट चैट रे जे जोग आपणक जीवन रे कोन करिछि चमत्कार चलंतु जानी नवा आपणक ठारु। हेलो
1: दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते मो पाई तेणु कालियारे तोर दर्शन केते ना पहड़ केते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते।

ट्यून कर जाते 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक म्यूजिक मित्र आनु रही छे आजी आपण को सहित रेनबो एसएमएस रे आ रेनबो एसएमएस रे आपण यदि चाहन जंदे निज मन पसंद रो गीत किछि सुनिबा पई तेबे आम पाखो को लेखि पठांतु टाइप करंतु एफएमआरसी स्पेस दे निज मन पसंद रो गीत रो प्रथम लाइन लेखंतु स्पेस दे गीत रे जो फिल्म बा एल्बम रो ता ना लेखंतु स्पेस दे निज ना एवं ठिकाना निश्चय लेखंतु आ तापरे सीधा पठे दियंतु 09495963210 ए नंबर रे व्हाट्सएप करबा पई नंबर टी हला 8895254200 आउ आम पाखो को रिक्वेस्ट आसी पहुंची जाई छी व्हाट्सएप माध्यम रे करी छंती हेमंत चांद माणेबंध सुनिया पटना बडंबारु लिख छंती गुड मॉर्निंग दीदी अ वेरी गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ विश्वात्मा चलचित्र रु ए गीतटी साधना सरगम को कंठ रे सुनी देबा को अनुरोध तो निश्चय चलंतु जिनपा सात समंदर पार तो चलंतु

रसना चखिना चखिना चखी साले पूरा रखीरी मोहना सबरी मन लाखी भुवनेश्वर।

0: हमारा जवाब रखा न।
1: परवर्ती गीत रिक्वेस्ट करछंती टाटा स्टील प्लांट रो आभास सेन एवं सुनिबा को चाहिंचंती नसीब रो गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक तो चलंतु सुनिबा तांको पसंद रो ए गीत टी।

0: अरे एते जल्दी थकी गलु, चल आउ गोटे राउंड जीवा चल।
1: तोर तो ऐसा अभ्यास नथला।
2: ए सोई पडलु ना कोन, सिगरेट टाणी दे, निदा आपे आपे चली जीवो।
0: अरे नहीं नहीं
2: नले चेबु केमिति मुंडो परे बा रिटेन टेस्ट ने।
1: ओ बुझिली, सिगरेट पीपी केमिति देखा जाउछु जानि पारछु त।
3: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023, anything wrong with you? Don't worry, try for the next time.
1: Tension nahi na, maybe kichi better option thibo to pai. Chhade obvious, nahole better option kono? Aau kichi option rahibo ni to pakhare.

0: हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग नाउ समस्ते व्यस्त थिबे सो चली छि कलाकार ट्यून करछन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे आज आपण मानक सहित सुजादा अछि दिन सारा रहिबी ढेर सारा मीठा मीठा गीत सुनेबी मीठा मीठा कथा मध्य हवा हां साथी
1: पागल बनाया
0: साथी भारतीय संगीत जगत रे अनेक प्रतिभाशाली गायक और गायिका मध्य निज असाधारण कंठस्वर द्वारा अमर हो रही छंती सेमानक मध्य ने साधना सरगम जने प्रमुख लोकप्रिय गायिका हां साथी जी कि निजरो मधुर कंठस्वर सुंदर उच्चारण और संगीत प्रति अपार निष्ठा बल रे से हिंदी ओडिया तमिल तेलुगु मलयालम बंगला मराठी और अन्य भाषा रे हजार हजार गीत मध्य गाई देशव्यापी ख्याति अर्जन कर सारी साधना सरगम जीवन संघर्ष परिश्रम और सफलतार एक उज्जवल उदाहरण आगक तो विषय ढेर सारा कथा हा कि बर्तमान समय गोटे कंठर शुणी ना सुंदर गीतटी एंजय करनेक्टेड ही रही 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहित

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: गोटे समय दयानिधि सामंत घर लोक कुड़कुड़ दास बोली डाकुथिले काहेकि ना लाइट पंखा चलिबार देखिले समस्तक उपरे चिलाउथिले
1: अरे रामू ए पंखा काई चलीछि बिजुली बिल कोन तो बापा दबो
0: किंतु आज समस्ते प्यारेलाल डाकुछन्ति काहेकि ना जेबेठु से सोलार प्यानेल लगैछन्ति सेबेठु मीटर कंटा भी निश्चिंत रे सोइछि आउ दयानिधि सामंत
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

0: अरे इतने जल्दी थकी गलु, चल आउ गोटे राउंड जीबा चल।
1: तोर तो ऐसा अभ्यास नथला।
2: ए सोई पडलु ना कोनो सिगरेट।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून कर चुन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटे दिल से दिल तक सुजाता अच्छी आपण मन के सहित सो चली छी किछि कथा किछि गीत साथी छात्र जीवन समय रे समय रो महत्व अत्यंत अधिक जदि सेही समय को हमें सम्मान दबा नियमित अध्ययन करबा तेबे भविष्य रे सफलता मध्य लाभ करबा जदि आम अवहेला करवा कि अलसमय दिन काटा तेब आम निश्चिंत से समय को फेरे आनी पारे आम निजे निजे लस करवा केवल से नुहे छात्र जीवन रे खाली नुहे जीवन प्रत्येक क्षेत्र में समय गुरुत्व रही जमीक जन कृषक हूँ जन श्रमिक हूँ कि डाक्तर हूँ शिक्षक हूँ किंबा अधिकारी हूँ समस्त समय एक अमूल्य संपदा

0: अरे इतने जल्दी थकी गलु, चल आउ गोटे राउंड जीबा चल।
1: तोर तो सब अभ्यास नथला?
2: हे सोई पडलु ना कोन, सिगरेट टाणी दे, निद्दा आपे आपे चली जीवो।
0: अरे नहीं नहीं
2: नले चेबु केमिति मुंडो परे बा रिटेन टेस्ट ने।
1: ओ बुझिली, सिगरेट पीपी केमिति देखा जाउछु जानि पारछु त?
3: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023. Anything wrong with you? Don't worry. Try for the next time.
1: Tension nahi na. Maybe kichi better option thibo to pai. Chhade obvious. Hale better option kono? Aau kichi option rahibo to pakhare.

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम डेन बकटक दिल से दिल तक सो चलीची केछि कथा केछि गीत हां साथी समय रो मूल्य महान व्यक्ति तंक निज जीवन रे प्रत्येक क्षण को सदुपयोग करी सफलता रे शिखर रे पहुंची छन्ती से माने केबे भी अलसवामी करिनथले समय को निजर सबुठारु बड़ संपद भाबरे ग्रहण करथिले

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम ब्याक वन्स अगेन ट्यून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी केछी कथा केछी गीत। हाँ साथी, समय त केबे फेरी चाहेना। हाँ, आम जीवन रो एहा होछि गोटे गभीर सत्य। एहा हमकु सचेतन करिथाय जे समय को अवहेला करबा केबे भी उचित नुहे। आमे जदि प्रत्येक क्षण मूल्य बुझिबा, परिश्रम एवं निष्ठार सहित कार्य करिबा, तेबे जीवन रो सफलता ओ संतोष निश्चिंत भाव में मिलेगा।

0: साथी समय तो इशारा देलानी शेष करता किसी गीतर कार्यक्रम को फ्रेंड्स ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक बर्तमान शुणु हिंदी एवं परे परे इंग्राजी संवाद रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली रु
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है।

0: खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NEET-UG 2026 scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir, POK

साथी समय तो इशारा देलानी शेष करुचु आज चर्चार कार्यक्रम को फ्रेंड्स ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान शुणु ओडिया रे संवाद एवं परे परे शुणिपारे इंग्राजी एवं हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी दिल्ली।

0: for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Center restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा हेल्थ केयर साफ सफाई आवास खेल विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है एक रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है श्री मोदी ने विज्ञान अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है उन्होंने कहा कि देश की माताएं बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से

0: भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का के

0: केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पर रुकने वाले नहीं है। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: फ्रेंड्स ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पाद

0: उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं, है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: केबेठु मोर सबु सांग माने कहुतिले किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मु प्रधानमंत्री कहिबा परे सोलर पैनल लगेली आउ मोर बिजुली बिल जीरो आसुची आपण भी लगांतु।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोडी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर
3: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एथिपई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएम को निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आउ दिल से दिल तक रे आसी पहुंची जाई छी आपनकर दिल का दोस्त ज्योति आपनक पाखरे आउ रहिबी राती 11:10 पर्यंत आपनक सहित आउ एही भितरे आरंभ होई जाई छी शो सुरीला आफ्टरनून। अच्छा पवन भल जिनसटे ना हाँ हाँ निहाती भल लगे केतेबेले भल लगे जेतेबेले बहुत बेसी गरम माने ए जो समय चली छी आउ एबे आसिला बेले बाटरे कोठी वर्षा होई जाई छी ठंडा ठंडा पवन बहुतला भारे बढ़िया लगुथिला तेरे ये सब समय प्राय समस्त को ही भल लगे जितेबले बहुत बेसी बॉडी गरम थाए बा झाड़ बोही जाऊ थाए और सेतेबले जदी टिके पवन आसी के देहरे बाजी जाए ओहो सेतेबले जो शांति लगे ता कथा कहिले न चले अच्छा जेतेबेले ई आमे तो एबे बिना पवन रे रहिबा इम्पॉसिबल हे जाउची जेते खरा होची आमे चेष्टा करू छे फैन तळे एसी रे कूलर सामना रे अमर स्टैंड फैन केते प्रकार फैन माने पवन पाइबा पै आमे केते प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सम पाखरे से पहुंची गलानी ऑलरेडी तेनो आमे माने प्रायतः फैन आगरे एसी आगरे रही जाउचु किंतु जेतेबेले इलेक्ट्रिसिटी नथिला ए फैन आसी नथिला सेतेबेले आमको पवन जोगोथिला आमरी प्रकृति हाँ गछपत्र हलिले जेतेबेले पवन आसे सेतेबेले आमे थंडा अनुभव करू आ जानु जे पवन होची कहिंकि ना जेहेतु वायुर कोनोसी रंग नहीं पवन हेले आमे भी जानी परुना से गछपत्र टिके उड़िले हलिले आम मुंडार चुट्टी टिके हलि जाए आमर लुगापटा टिके हलि जाए आमे जानु पवन होची आ अनुभव करि परु सुंदर भावरे से थंडा थंडा पवन को किंतु किंतु किंतु जेतेबेले पवन हुई सेतेबेले पवन कोठु पाउथिले आमे सेतेबेले भी पवन आमको सेई प्रकृति ही दउथला केमिति दउथला हाँ बिंचणा साहाज्य रे हाथ पंखा साहाज्य रे आमे पवन पाउथिले से बिंचणा हेउछि आम ओडिया घरर एक पुरातन आउ भारी उपकारी जिनिसटे आधुनिक जुगरे विद्युत पंखा एसी एसबुर व्यवहार बहुत बढ़ी जाइछे सत किंतु केबे केबे से बिंचणा निहाती खोजा पड़े नहले तार सब्स्टिट्यूट हिसाब रे आमे जदि समिति कोनोसी जगह रे थाउ जोठी आम पाखरे बिंचणा नहीं पवन पहुंची पारुनी फैन नहीं एसी नहीं असुविधा रे पड़ीछे किछ नहले न्यूज पेपर को भी बिंचणा बापरे आमे यूज करि दो ना हाँ एई प्रकृति आमको गिफ्ट दैछे बिंचणा हाँ अवश्य मनीष निजर बुद्धि कौशल बल या तालपत्र खजूरी पत्र कि बाउंसरे आमर ए बिंचणा आई बिंचणा थी आम संस्कृति आम ग्राम्य परंपरार सुंदर परिचय आउ प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह समय रे जो खरा समय चली समय आम शरीर को शीतलता प्रदान करे आमर बिंचणा ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक शो चली छी सुरीला आफ्टरनून और ज्योति आसी पहुंची जाई छी आपन को पाखरे पहुंचो छी आउ किछी ब्यूटीफुल ट्रैक आपन को पाई स्टे ट्यून्ड एंड

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे चेतन। समय एक बहती नदी की तरह है, क्योंकि जिस तरह के सेतु के नीचे से गुजर पानी कभी वापस नहीं आता, उसी तरह बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। तो इसीलिए जिंदगी के हर पल को

खुल के जिए। हम जिंदगी भी पानी की तरह जीना चाहिए। जिंदगी एक नदी है, चाहत इसकी जलधारा है, खुशी और गम के बीच बीच हो रहा गुजारा है। नदी में जल न हो तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जीवन में अगर प्रेम न हो तो मानव जीते जी मर जाता है। वह अपना रास्ता खुद बनाती है, पर्वतों पत्थरों के सीने को चीर कर हर किसी के दिल में अपना घर बनाओ मन की तृष्णा को मारकर। सबके वह प्यास बुझाती जो उसके तट पर जाता है। जात पात धर्म भूल कर उसमें सब नहाते धोते हैं। नदी में तब तक जीवन है जब तक उसमें रफ्तार है। मानव तब तक मानव है जब तक उसके हृदय में प्यार है। जो भी सामने आता है वो उसे बह ले जाती है। सबको लेकर साथ चलो, हमें यही समझाती है।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: जीवन, जिंदगी क्या है? कुछ निश्चित समय के लिए मिली जीवन जो पता नहीं कब खत्म हो जाए। ये कह सकते हैं कि जिंदगी पानी के एक बुलबुले के समान है जो कभी भी खत्म हो सकती है, तो क्यों ना इस अनमोल जीवन का एक एक पल जिया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कितने पल हैं, ये सोचकर चलना चाहिए कि एक पल में कितना जीवन है। जो पल बीत गया वो चले गया, फिर हाथ नहीं आने वाला है। अब जरा सोचे, जो पल बीत चुका है, जो हमने मजबूरी में काटे थे, उन्हें जिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें याद करके ही घबरा जाए? यदि ऐसा हो तो हम अपने जीवन को जीवन नहीं कह सकते हैं। कर दिया बर्बाद यू वरक किताबे जिंदगी, कुछ हमी ने फाट डाला, कुछ हवा में उड़ गए। इस तरह अपनी जिंदगी को बराबर न करें। यह अनमोल है, इसे जितना भी हो सके खुशियों से भर दे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो और मुस्कुराते हो, इसी को जीना कहते हैं। तभी जिंदगी सार्थक हो सकती है। अगर जिंदगी में खुशी है तभी आप सही मायने में जी रहे हो, और खुशी तो आप छोटे से छोटे बात भी ढूंढ सकते हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ऐसे कितना और कैसे प्राप्त करते हैं। याद रहे, दूसरों को खुशी देने से ही हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। प्रयास करें कि हम अपने परिवार वाले और अपने परिजनों या परिचित लोगों को, जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं, सभी को दिल से चाहे, किसी से भी नफरत न करे। इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है और उसके साथ ही हमारा मन भी दुखी होता है और दिल में दरिया बढ़ती है। जिससे भी मिले मुस्कुराकर मिले, क्या पता फिर मिले या ना मिले। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। इस आखिरी मुलाकात की याद कैसी हो, कड़वाहट भरी या प्यार भरी, ये सब हम स्वयं ही सोच सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी सिर्फ एक बार के लिए मिले हैं। इस संसार से जाने के बाद कोई किसी से दोबारा मिलने वाला नहीं। बिछड़ जाएंगे सदा सदा के लिए, कभी दोबारा न मिलने के लिए। फिर चाहे हम लाख कोशिश कर ले, एक पल के लिए भी उन्हें नहीं मिल सकता। रह जाती है तो सिर्फ यादें और पछतावा सदा सदा के लिए। वो मेरे बाद रोने हैं, कोई उनसे पूछे कि पहले किस लिए नाराज थे, अब मेहरबान क्यों हैं? भाव यही है कि पहले तो हम किसी इंसान में कोई अच्छाई नजर नहीं आती थी, और उसके मर जाने के बाद कोई कमी नजर नहीं आती। उसके दोष भी गुणों में तब्दील हो जाती है और वह कम महसूस होती है, जो फिर कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो क्यों ना हम समय रहते ही संभल जाए और अपने जीवन का पूरा आनंद लें। इसे दुखों की भट्टी में न झोंके। ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता था।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। काम के बोझ के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। परिणाम स्वरूप वह तनाव में रहने लगा। घर वाले से भी प्यार के साथ बात न कर पाता। घर में झगड़ने लगा और घर का वातावरण तनावपूर्ण रहने लगा। एक दिन उसने सपने में देखा कि वह घर से अपने कार्यालय के लिए जा रहा था, तो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाया, जिसके कारण दुर्घटना हो गई और उसने वही दम तोड़ दिया। उसका शव उसके घर पहुंच गया। घर वाले पर तो जैसे अचानक पहाड़ टूट पड़ा। उसका अचानक बिछड़ जाना सहन नहीं कर पा रहा था। उधर उस व्यक्ति की आत्मा यह सब देख रही थी। उससे उनका रोना सहना नहीं हो रहा था। वो उन्हें छूने की कोशिश करता, पर छू नहीं सकता। वो सोचता कि जब उसके पास सारा परिवार था, तो उसके पास समय नहीं था और उसे उनकी अहमियत नहीं पता थी। अब वह इन सब को बताना चाहता है कि उनसे कितना प्यार करता था, परंतु बता नहीं सकता। वो सोचता है कि अगर मुझे एक पल भी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं कि ये मेरे लिए क्या है, परंतु अफसोस, अब क्या हो सकता है, ये सोचकर उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत दुख होता है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे उसकी जुदाई सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु वो कभी जाहिर नहीं कर पाए। अब उनके मन में यही अफसोस था कि काश हमने इन्हें खुश रखा होता। जो समय इनके साथ गुजरा वो खुशी से गुजरा होता। अब पत्नी व बच्चे यूं ही सोच रहे थे कि काश हमें कुछ लम्हे और मिल जाए, क्योंकि वो दुनिया में इतने उलझे हुए थे कि कभी एक दूसरे के मन में झांकने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब चाहने से क्या हो सकता है। अब उन्हें जिंदगी के एक एक पल की कीमत पता चल चुकी थी। इतने में उस व्यक्ति की आंख खुल गई और वह अपने चारों ओर देखता है। वह अपने घर में है, उसका परिवार उसके पास है। उसकी जान में जान आई। उसने अपने परिवार जनों को बहुत प्यार किया और पूरा जीवन प्यार से रहने का वादा किया, क्योंकि अब उसे जिंदगी की कीमत पता चल गई। क्योंकि जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं, ये अमूल्य है। इस दुनिया के जंजाल में इतना मत फंस जाओ कि जीना ही भूल जाए और केवल जीने की रस्म ही अदा करते रहे। तो दोस्तों, विद दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन,

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: ಸುಣಿಲೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಂಹೆ।

0: बहुत सुंदर कथा कहिले चुप रही के सुंदर समस्या गोटे छोटिया समस्या ताको समाधान करछनी बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद दीदी रहिली नमस्कार
0: नमस्कार हाँ सब बेले निजर पॉइंट रखिबा सेते भी जरूरी ही न थाए आम संपर्क को गुरुत्व देवा भी आमे निहाती दरकार देखंतु जेमती साई फोन करथिले आ कहिले जे सांगंक भितरे भूल बुझामणा आ झगडा को न बढिबा पई निजे थरे चुप रहितले किंतु पछरे सांग निजर भूल बुझी पारिथिले आ तंको सॉरी कहितले केते सुंदर कथा कहिले एबे नेक्स्ट कॉल देखिबा हेलो
2: अशोक पंडा मधुपटना कटक
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
2: अख घुरु थाए चक घुरु थाए पई संसार भितरे घर करिथिले पत्थर पड़िले सही
0: बढ़िया कथाटे आरंभ कले
2: संसार भितरे घर करथिले घर भितरे स्वामी स्त्री भितरे टिके उच्चवाच हे जाए समस्या पैकि उच्चरे टिके चिलेकी कथाबार्ता कहुछि सेतेबेले सबसे भला चुप रही जीवा सेतेबेले जदि चुप रही जीवे निरवता अवलम्बन करिवे सीए कि समय चिलेला परे से निज भूल बुझी पारिवे से समस्या रो समाधान हे जाए
0: अच्छा बढ़िया गोटे टिप्स देले
2: निजे जदि पाटी तुंड कले कि अभिया कोन कहिले तर सेटा समस्याटा जिमिटी खेलरू महाभारत आड़क जाए
0: निहाती निहाती बढ़िया कथाटे कहिले जे जेतेबेले जणे आपण आम उपरे रागी चंती पाटी करूछने आमे सेई समय रे टिके चुप रहिगेले निहाती बापरे समाधान हे जीवो
2: आज्ञा आज्ञा
0: बहुत सुंदर कथा कहिले बहुत बहुत धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: देखंतु संसार भितरे आमे घर करिछे केते सुंदर कथा आसिला जे पत्थर पड़िले भी आमको सहिबा को पड़िबो सेमिती किछे कथा नाही किंतु आमे तो सहिबा को सिखिबा दरकार निहाती आम भितरे गोटे सहिष्णुता ए गुणटी रहिबा निहाती दरकार तेणु चुप रहिगले अनेक समस्या समाधान हो जाए जहां पाटी खोलिले समाधान हो न थाए तेबे नेक्स्ट कॉल के करिछंती कोट करिछंती देखिबा हेलो
3: अपा नमस्कार
0: नमस्कार जय जगन्नाथ गुड इवनिंग के कहछंती कोट कहछंती
3: आभासन कहजी टाटा स्टील प्लांट
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
3: धन्यवाद अपा
0: कौन कही बे आज रो टॉपिक विषय रे
3: पर ऑफिस स्टाफ जते मो टिके बाय अध्या टाइम रे ऑफिस स्टाफ जते फोन करंती मो पाकू से टाइम रे मो टिके बिजी रह जाय घर भी से टाइम रे मोर मिसेस प्राय अध्या टाइम रे से टाइम रे भी मो पोकती कॉल लगाय प्राय फोन टा त जाकले बिजी रहिबो त तेनु कोली से मिटी बेले बेले माने दुदंद रे पड़ जाय संदेर भी टिके पड़ जाय हमर स्टाफ के इरा छंदी समान अपता आली सापा फोन फार भी कहते हैं कही लगे कहते मिसेस भी मोर बहुत रागरुषा रही अधिया टाइम मत सब गाड़ी गुज कर प्राय भी जिते गाड़ी गुज कले भी मुझे ठटा मजार भी नहीं जाए ठटा मजा नहीं मुझे चुपचाप रही जाए तार सब मुझे पांच दिन कि छह दिन कि पाखापाखि चुपचाप रही से भी धीरे धीरे मन बुझे कि फोन तापर मुख दे कॉल करे
0: अच्छा भावनी जे जाहौ माने इते दिन हलेनी भाई चुप हे जाय छथि तनो मु टिके कॉल कर दिए काहे के रागी भी
3: मु अधिया टाइम मु भी कॉल से मु कॉल भी उठाय दी
0: अरे बाप रे इते रागी जानती
3: आगो तरफ फोन करी कि पारी पारी कहि कि हे गेला धन कहि कि मन को नीचे बुझे कि तापर ए माने होडु जो तमन अपा आली साबा तापर पछे तक फोन करी बुझा दी नाई आमे भाई के ते ठटा मते तम कति फोन कर करी कह देलु किछि रागंतुरी हे बा तम भितरे टिके आछन कर दियं
0: अच्छा जा हो घरणी को बुझे कि रखी जंती तंका कथरे टिके चुप रही कि बहुत बहुत धन्यवाद
3: छन बेटा अधिया ते ठटा मते बे एणु तोन को कह दियं फोन न देन रे एणु तोन के मिछरा त कह दे कि
0: अच्छा सी टिके ठटा करियो भाई मजा खेलवा पई कर दियं आ घरणी अपन कर टिके रागी जंती अच्छा एमती हुए के काम भितर एमती हुए छोटो मोटो कथा तथापि एठी कहिबी मैडम को जे जमा रागंतुनी मन भितर राग रखंतुनी
3: तापर स्त्री लोग जात टिके संदेह पटिले प्रथम पॉइंट
0: नाही नाही सेईटा आपण जो कहउचंती से पॉजिटिवनेस रहिबा दरकार आपण को सेति की भल पांती सेति भई मन भितर कोठी ना कोठी आपण को टिके हरेई दबार डर अछि सेति भई से सेमती होंदी सेईटा किछि माने नॉर्मल एकदम नॉर्मल आ जदी से न भाबी आपण को बिषय रे के भाबीबे बहुत सुंदर कथा कहले बहुत बहुत धन्यवाद
3: धन्यवाद आप रोजी नमस्कार
0: नमस्कार तेबे देखंतु आमर पारिवारिक कलह गोटे छोट जिनस किछि गोटे बड़ जिनस नहि आउ बाकी रहिले एई जो आमर घरणी माने रहिले टिके टिके मन भितरे सब मानक पई संदेह आसी थाए छोट मोट संदेह आसीबा भल आ से सब को शट आउट करबा नियति दरकार परस्पर परस्पर भितरे कथाय कि से सब समस्या को समाधान कर देबा नियति दरकार किछि बड़ समस्या नहीं चुप रहिबा एकदम चुप रह न रही जाई धीरे धीरे छोट मोट कथा रे निज

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ।

होता है। इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: आम राज्य एवं स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाएछि। एथिपाई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाए प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएमको निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे इतने जल्दी थकी गलु चल आउ गोटे राउंड जीवा चल
1: तोर तो सब अभ्यास नथला
2: हे सोई पडलु ना कोन सिगरेट टाणी दे निदा आपे आपे चली जीवो
0: अरे नहीं नहीं
2: नले चेबु केमिति मुंडो परे बा रिटेन टेस्ट ने
1: ओ बुझिली सिगरेट पीपी केमिति देखा जाउ छु जानि पारु छु त
3: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023. Anything wrong with you? Don't worry. Try for the next time.
1: Tension nahi na. Maybe kichi better option thibo to pai. Chhade obvious. Hale better option kono? Aau kichi option rahibo to pakhare.

काश ये शाम कभी ढले ना, काश ये मोहब्बत कभी रुके ना, हो जाए आज दिल की चाहते सारी पूरी और दिल की कोई चाहत बचे ना।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे रीमा सोलार पैनल लगे दे सोलार पैनल लगे दे केबे ठु मोर सब सांग माने कहुतिले किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मु प्रधानमंत्री कहिबा परे सोलार पैनल लगेली आउ मोर बिजुली बिल जीरो आसुची आपण भी लगांतु
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

0: मा मा देखों तू एथरो राशन कार्ड रे कित्ती चावलो मिली ची।
1: अरे बहु इत्ती चावलो कोठु आनिलु
0: किए दला किए आउ दबा मा आमो सरकार दे चंती मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ होई ची परा एबे आमो को मुंडो पिछा 5 किलो नुहो 10 किलो चावलो संपूर्ण मागणा रे मिलु ची।
1: अरे बा एटा तो भारी भलो कथा सरकार आमो दुख बुझी चंती।
2: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 3 crore अधिक ओडिशावासींकु मिळुछि अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा। ओडिशा सरकार आपणक सुख दुःखर साथी।

0: माँ माँ देखो तू एथर राशन कार्ड रे कितने चावल मिली ची।
1: अरे बहु इतने चावल कोठु आनिलु
0: किए दला किए आउ दबा माँ आमो सरकार दे चंती मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ हो ची परा एबे आमको मुंडो पीछा 5 किलो नुहो 10 किलो चावल संपूर्ण मागणा रे मिलु ची।
1: अरे बा एटा तो भारी भलो कथा सरकार आमो दुख बुझि चंती।
2: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 3 कोटी रु अधिक ओडिसा वासिंकु मिलुछि अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा ओडिसा सरकार।

सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो संभार हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री बेस आकर्षणीय एवं प्रतिटी मिलेट सामग्री शुद्ध ओ स्वास्थ्यप्रद जून 12 रु 16 तारीख पर्यंत ए थरर रज मौज को आहुरी उल्लास रे भरिबा को जाउची सुभद्रा शक्ति बजार रो स्वतंत्र रिहाती एथर रजरे स्वतंत्र मजा सुभद्रा शक्ति बजार स्टार स्कूल पाख यूनिट 8 एसआईआरडी परिसर भुवनेश्वर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय

0: नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार

0: यात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। PV सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जोगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे

0: जिसे इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइट्स गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू फर्दर विमेन लेड डेवलपमेंट अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services including pilgrim registration, accommodation, healthcare facilities and disaster management. With Dipendra Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata on the occasion of 12 years of the NDA government at the centre. Mr. Adhikari said people are giving their land

म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल्ली दिल तक डेरी नकरी आरंभ करिबा शो रेनबो एसएमएस रेनबो एसएमएस रे जदि आपन सुनबा को चाहुचंती निजो मन पसंद रा गीत तेबे निजो मोबाइल रा एसएमएस बॉक्स को जाई टाइप करंतु एफएमआरसी स्पेस दे निजरो नाम ठिकाना लिखि आउ टी स्पेस दे सुनबा को चाहुतिबा गीत रा प्रथम धाडी एवं गीत टी केउ फिल्म रा बा एल्बम रा तारो ना लिखि पठि दियंतु अन द नंबर 0949596310 एवं ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हेउची 8895254200 तेबे साथी मानन को एठी गोटे अनुरोध रहिब जेहेतु समय गोटे घंटार मिलूछि से भितर जेतिक गीत को आम स्थान दे परिबु निहाती भाव से गीत को स्थान दबु चेष्टा करिबु अधिकरु अधिक गीत को सामिल करने अधिकरु अधिक ना सामिल करने जो मानकर गीत बाजी पारिब नाहीं निहाती भाव में आपन को छोटिया रिक्वेस्ट मन दुख करिबे नि गीत बाजुछि सुनंतु एंजॉय करंतु निहाती भाव में आम चेष्टा करिबु गीत गुडी को स्थान देवाई तेज डेरी नक आरंभ करिबा प्रथम एसएमएस कर समीर संगीता पंडा तेलेंगा पेंठा कटक्रु शुणा चाहते दादा फिल्म रु गोटे सुंदर गीत गीतरू गाई यसुदास

0: এইটি শেষ করছু আজ রেইনবো এসএমএস টিউন করছ 100.4 আকাশবাণী এফএম রেইনবো কটক দিল সি দিল তাক বর্তমান শুনন্তু নিউজ ইন হিন্দি রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি রো
1: নমস্কার আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে অরুণ কুমার प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं।

0: सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।
2: राति 11:05 मुख्य संवाद सह महेन्द्र कुमार माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य क्याबिनेट बैठक जारी। गत 2 वर्ष सरकार पदक्षेप जोगु विकाश और सशक्तिकरण क्षेत्र में दृश्यमान परिवर्तन आसी कहिले मुख्यमंत्री। केजीठारु पीजी पर्यंत शिक्षा को देयमुक्त करिबा पई मुख्यमंत्री घोषणा। भुवनेश्वर विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ और शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। कलाहांडी जिला सिरलीगुड़ा उद्घाटित है राज्यर प्रथम हाथी प्रशिक्षण केन्द्र। चलित नीट पुनः परीक्षा में परीक्षार्थी आउ अधिक 15 मिनट समय देवाई सरकार निष्पत्ति। जातीय परीक्षण संस्था एनटीएर महानिर्देशकों सह पुनः परीक्षार स्वच्छता एवं सुचारू परिचालना नहीं कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन समीक्षा बैठक। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप्रे आज इंग्लैंड और श्रीलंका मध्य मुकाबला। टॉस जीति श्रीलंका बोलिंग करने को निष्पत्ति। केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज रेलवे निजुक्ति बोर्ड द्वारा परिचालित निजुक्ति प्रक्रिया समीक्षा कर परीक्षा को स्वच्छता त्रुटिशून्य और वैषयिक भित्तिक करने को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा संपर्क में गुरुत्वारोप। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नुआदिल्ली गणमाध्यम और जोगाजोग विभाग अधिकारी विभिन्न प्रसंग नहीं बैठक में आलोचना। समस्त 36 जाक राज्य और केन्द्रशासित अंचल गणमाध्यम अधिकारी जोगदान। अमरनाथ यात्री सर्वोच्च स्तर सुरक्षा लगी सरकार प्रतिबद्ध कहले स्वराष्ट्रमंत्री। उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री मानंकु नेई नीति आयोग बैठक अनुष्ठित। एसबु राज्यगुड़िकर विकास नवसृजन और सम्मुखीन होता विभिन्न आह्वान संपर्क आलोचना। मुख्य संवाद आज पई एतिके नमस्कार।

ए मनीष आशा करे, कामना रखे, कर्म करे, आउ से कर्मर फल केवल से कोटि ब्रह्मांडर अधीश्वरंकर इच्छाधीन व्यापार बोली मणे। जेबे ईश्वर परिश्रमर प्रतिबदलरे आनंद उल्लास हर्ष जीवन रे भरी दियंती, सेबे आमे समर्पित भावरे कहू जे सबु से इच्छामयंकर इच्छा, किए से इच्छामय जे आमर सबु इच्छा को पूरण करंती। जेबे जहा जेतिकी आमे इच्छा करू आम सहित सेमिति घटे नाही सत, किंतु से जानी थांती आम पाई कौन भल। से जेबे जहा जेतिकी इच्छा करंती सेतिकी आम सहित घटु थाए। माटीर मणिष सिना मान अभिमान करी केबे कहा प्रति उणा अधिक करी पारे, हेले सर्वकर्ता श्रीहरि विष्णु से त करुणार उत्स, से भावग्राही, से केबे पाथर अंतर करंती नहीं। तांक इच्छारे चले ए सारा जगत, से चाहिले सबु किछि संभव। तांकरी पाखरे पहुंचे सबु गुहारी, प्राप्य अनुजाई दियंती इच्छामय श्रीहरी।

0: ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସକାଳ 8ଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य

0: घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in हर घर सूर्य घर
1: 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक
2: ये हेउची मो सानो भाई बहुत दुष्ट कॉलेज रे मार्कशीट फोटोशॉप करिकी बापांकू देखाउथिला काली मु लाइट बिल रे जीरो अमाउंट देखिली तापरे भाबिली की निहाती एटा फोटोशॉप कराहिछि नहले जीरो बिजुली बिल पॉसिबल केमिति पचारिली तो कहला
3: भाई सबु सही ऊपर वाला रा दया सोलर पैनल अछि ना
2: मु कहली ओ सेईटा सत कथा भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोडी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର
1: साथी आपण मध्ये कॉल करंतु शीघ्र शीघ्र आ जणांतु आज समय बहुत कम कारण आज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अछि 9:30 रे तेनु कॉल गुडी का आपण मनकर ठीक जल्दी जल्दी नै जबा पई पडुछ मते नेक्स्ट कॉल देखिबा कि हेलो नमस्कार के कोथिले कोठु कोथिले एवं फेर ते कॉल टी कटि गेछि कोनसी कारण रु वर्तमान आसी जाउछि आ गुटी कॉल देखिबा के करिछंती आ कोन कहुछंती तांकर पिला बडर कथा तांकर पिला बडर को खेलर रुचि अधिक थिला नमस्कार के कोथिले कोठु कोथिले हेलो
2: भुवनेश्वर सालिया साहू सर
1: आज्ञा नमस्कार
2: आपनको प्रोग्राम सुनि बहुत भल लागुछि छोटबेला कथा आपन मन पके दउजनी भारी भल लागुछि
1: भाई कोन कहबे आपन को खेल को बेसी खेलुथिले छोटबेले भारी भल लागुथिले आपन
2: छोटबेलु त मु जेतरे मारादाना खेला उसुदा फुटबल खेलथुनी कलिकता रे
1: आज्ञा आज्ञा
2: आउ कबड्डी खेला खेलथुनी गां रे आउ बहुत खेल तार खेल किराम खेल बहुत खेल मुझे छोट बेलु कहीं पाठ माठ पढ़ी ना आोट बेलु टे भारी दुष्टम टे सब आड़े पड़ंग कथा बोल मोल मानि दिए आँ कथा भी सब बेले मुसा कर मन पड़े सब बेले आबार रज आउच देखा जदि रजरे जदि सुविधा हम गाँ को जिमी बुलवा को सुविधा ना आई रही पिला छुआ नहीं दुकान कर
1: अच्छा मु कहि गाँ को गले सुजोग मिलले खेलिबे वर्तमान भाई पुनि इच्छा हुए खेलिबे पई
2: हां से कि कबड्डी खेल भल लागे छै छोट बेलु पान सिगरेट बीड़ी एगुडा आमे खाउतुनु
1: हां
2: हां आ समय घर घर बुली कि पिठा पणा पखाळ आंब पणस एगुडा सब खाउतुनु आउ सब भल सब
1: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद किंतु मोर आपन को रिक्वेस्ट आपन जम्मा से तमाखु द्रव्य सब खाइबेनी आपन सुस्त रहले आमु केमती सुनुथिबे आमु को भल पाउथिबे
2: नमस्कार जतले आमे त छोट पतिनु
1: जानि पान नथिले वर्तमान त जानि लेनी आउ कोन हां स्वास्थ्य पक्षे हानिकारक आपन हमरो जने सचेतन श्रोता आपन सेगडा को जम्मा सुनिबेनी आमु केमती भल पाउथिबे आउ आमु केमती सुनुथिबे बहुत बहुत धन्यवाद रहली नमस्कार
2: नमस्कार सर
1: साथी आपण मध्ये कॉल करंतु आ जणांतु जे आपणकर प्रिय खेल कोण थिला छोटबेले को खेल को खेलबे आपण आपण बहुत पसंद करूथिले आ वर्तमान सुजोग पाइले से खेल को खेलिबे आ निजे को फिट रखिबा पे एबे कोण खेला खेली करछन ने नाही आपण तार ऊपर आज हम कथा होचे देखिबा नेक्स्ट कॉलर के आ कोण कहउछंती नमस्कार की कोथले कोड कोथले गुड मॉर्निंग
3: नमस्कार गीता कोथले जवसिंहपुर
1: आगे मैडम नमस्कार को खेल खेलबे पे पसंद करंती मैं आपण मैडम आपण
3: छोटबेले तो आम पुती खेलु रुमाल चोरी बोहु चोरी लुडु चार
1: खेल रज आस मिले खेलि मैडम कहतु
3: तास
1: खेल ठीक अच्छे तास फिजिकल एक्टिविटी हम खाली मानसिक खुशी मिल कौन कहे मैडम जो मैंने शुणुंच छोट छोट पिला सब कुनी भाई भूनी माने से मानको कौन कहे से मोबाइल टिके छाड़ी
3: की
1: बाहर खेल खेल बढ़िया बढ़िया रही नमस्कार बहुत सुंदर मत दे साथी आ गोटे कल नहीं जावा देखा किए कर कौन कहते मत से को खेल को बेसी पसंद करुले छोट बेले खेल वर्तमान जो खेल परिभाषा टिके टिके बदली बदली जाऊँ ता देर तांकर कौन मत नमस्कार किए कहते कौट कहते
4: नमस्कार मु गंजाम जिला छोटा ब्लॉक लोकनाथ राजीव गौड़ कहते
1: आज्ञा नमस्कार गुड मॉर्निंग कौन कहे
4: गुड मॉर्निंग सर
1: कौन कहे भाई को खेल को बेसी पसंद करुले आप छोट बेले खेल
4: क्रिकेट कबड्डी और खो खो
1: अच्छा अब वर्तमान खेलवार सुजोग मिलुची ना नहीं
4: फुटबॉल भी हां एबे भी खेलिए को इच्छा हुए किंतु ये ओवरवेट है एक तो सते जा छोटी खेलो
1: अच्छा ताले आपन ट्राई करन तो शीघ्र शीघ्र टिके पुनी खेली की वेट को टिके पुनी कम कर दवा पई वेट लूज करले आपन पूरा फिट हो जिवे पुनी आउतरे खेलिबे छोटा पिला भलिया
4: हां सर आज तो फीफा वर्ल्ड कप देखिया रातिटो
1: हां आगे आगे बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करले आपन सत कथा है की बहुत भल लागिला भाई रहली नमस्कार
4: नमस्कार सर
1: ସେଥିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟର କାରଣ ଏଇ ଖେଳ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦିଏ। ଆମର ଏକ ମାନସିକ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଁଧୁଡ଼ ଜୀବନରେ ରହିଛି ତାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଏଇ ଖେଳ। ଯୋଉ ଖେଳକୁ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇ ଖେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଖେଳିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ନେଇଯିବା, ଦେଖିବା କିଏ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କିଏ କହୁଥିଲେ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
0: କିଏ? ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ।
1: ନାରାୟଣ ଭାଇ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ?
0: ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଖରା ହଉଛି।
1: ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଭାଇ ଛୋଟବେଳେ କୋଉ ଖେଳ ବହୁତ ଅଧିକ ଖେଳୁଥିଲେ ଆପଣ?
0: ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳ ହଉଛି ଚେସ୍।
1: ଆଜ୍ଞା,
0: ମୁଁ ଚେସ୍ ଖେଳରେ ମାନେ 2007 ମୁଁ ଓଡିଶା ଚମ୍ପିଅନ ହେଇଥିଲି।
1: ବାହ!
0: ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କୋଲକାତା ବମ୍ବେ ଯାଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖେଳରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ନେଇକି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ କରିବି, ସେମାନେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଚମ୍ପିଅନ ବି ହେଇଛନ୍ତି।
1: ବାହ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ପାଖକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ଭାଇ ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଚେସ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆମର ଦେଶର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା,
0: ମୁଁ ଏଠି କହିବି।
1: ଆଜ୍ଞା,
0: ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମୁଁ ଚେସ୍ ଖେଳ ଶିଖେଇଲି।
1: ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା,
0: ଚେସ୍ ଖେଳ ଶିଖି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନ ହେଇଛି।
1: ବାହ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା।
0: ଏମିତି ମୋର କହିବା କଥା, ମୁଁ କହିବା କଥାଟା ହଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖେଳ ପ୍ରତି ଯଦି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଜର ବାପା ମା ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କରିବାକୁ ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋବାଇଲ ଫାଲତୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଡିଆକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେ ପଡିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ବୋଲି ଚିହ୍ନି ଲୋକ।
1: ବା, ବଢିଆ କଥାଟି କହିଲେ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆପଣ କଲ୍ କଲେ, ସମୟ ଭାଇ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଜି ରହିଲି। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ପାଇଁ
0: ଧନ୍ୟବାଦ।
1: ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ସାଥି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଇସାରା ଦେଇକି କହିଲାଣି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସହିତ ସାରିବାକୁ ପଡିବ, ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜିର ଡାଇଲ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଚିଟ୍ଚାଟ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଏହି ଖେଳକୁ ନେଇକି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମର ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଖେଳ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ତଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ଖେଳିବାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନ ଦିଆଯାଉ, ପାଠପଢ଼ାର ବସ୍ତାନି କେବେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭାରି ନ କରିଦେଉ ଯେ ଖେଳିବାର ସେ ଯେଉଁ ମଜା, ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ କୁଆଡେ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଏକଥା ହେବାକୁ ଆମେ ଦେବାନି। ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁଣି ସେଇ ଖେଳ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।

0: वेलकम बैक अगेन ऑन 100.4 आकाशवाणी एफएम बिंबो कटक सहित आपण माने समस्ते 9:31 मिनिट स्टूडियो घंटारे आसंतु शुणिबा वर्तमान स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम स्कूल टाइम बाय भारत मसाला
1: यही कार्यक्रम प्रायोजक हेउछन्ति भारत मसाला
2: ऑनलाइन रे व्हाट्सएप रे हेले राजु विजु सविता रमेश सेते बेले ये सब सुविधा हम पाई नथिला रे पिले आमे पाठ पढ़ु डीबी आलु हाँ सारे पढ़ाऊ आम पढ़ु तेमें सब विज्ञान जुगर पिला हौ मन लगे पाठ पढ़ श्रोता बंधु मु भारत मसलार भरत मऊसा हाँ कही गुरुवार आसबि आसीगली हेले तम मानक लगे केते कथा मु आणिकी आई मन लगे शुणब कारण आम प्रश्न उत्तर दे भारत मसला पक्ष पुरस्कार पाइब सी अभिभावक हूँ कि छात्र छात्री हाँ भारत मसलार लक्ष्य केवल रोषे घरे नुहे पिले रोसे घर ठू आरंभ करी शिक्षा पर्यंत हाँ तमने केमिति मन लगे पाठ पढ़ आम शिक्षार विकास होती भारत मसला बगीचार माली स्वयं सीधा नंदिता पंडा महोदया आम भारत मसला स्कूल टाइम रे कौन कहते आस मन दे टे शुणी ना
3: भारत मसला स्कूल टाइम पिला मान को तथा अभिभावक मान को समस्त को स्वागत जनाऊ पिला मैंने तुम्हें मैंने आज शिशु काली भविष्य नागरिक हब तेणुकर मु चाहिए तुम्हें मैंने मूल्यवान समय को जमा नष्ट कर निज घरे वर्तमान पाई अच्छ निज घर को भाव ये आम स्कूल सब बड़े मोबाइल रे टीवी रे एथिरे सब न मतिकी निजर घरे समय दे कि तुम्हें मन लगे कि पाठ पढ़ निश्चिंत भविष्य रे बड़ मनीष हब
2: शुणिल टीपिले मु एबे अनुरोध करिबी आम समस्तंकर अति प्रिय मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार प्राप्त शिक्षयित्री लक्ष्मी प्रिया राउत महोदया आजिर अध्यायरे तम मानक लागि किमिति कथा रखिछन्ति आस शुणिबा
3: आदरर पिलामाने विभिन्न जिल्लार कोणे अनुकोणे थिबा वरिष्ठ कनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ समस्त रेडियो श्रोतामानंकु यथामान्य गत अध्यायरे गोटे शिशु प्रति आमर कोण कर्तव्य रहिबा उचित जहा आपण माने शुणी सुंदर मतामत देथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद आज मोर किछि कथा पिलामानंकु उद्देश्यरे पिलामाने तुमे माने तो सब स्कूल को जाउछ पाठ पढुछ ट्यूशन रे पाठ पढुछ घरे पाठ पढुछ तेणु तुमे माने सब जने जने विद्यार्थी ना कोण कहुछ तेबे एई जो विद्यार्थी माने बा तुमे माने पाठ पढिबा समय रे केहु बळी हेबा उचित आज मु से विषय रे किछि कहिबे तमे जानिछ परीक्षा समय आसिले पिला माने बहुत परिश्रम करते दिन राति पढ़ती पढ़ी सारा परे परीक्षा दियंती किंतु रिजल्ट आसला बेलू से संतोष जनक फलाफल मिले ना क्या पक्षर कारण कौन कारण जे से मन प्राण दे एक लय रे एकाग्रतार सहित सेमाने पाठ पढ़ा समय मन ध्यान दे न था खाली बही धरी बस मन विभिन्न आड़ विभिन्न चिंता आसो तेणु जहा फल कि बही धरवे किसी मान न था तेणु आज पे तुमको कह जे विद्यार्थी हेपाई केम शिक्षा लाभ करके भगवान सृष्टि प्रत्येक जीव जंतु गता उद्भिद पशुपक्षी समस्त किसी शिखबार अच्छी जे आचार्य चाणक्य कही चेष्टा मकध्यान स्वान निद्रा तथा अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण गोटे विद्यार्थी गोटे शिक्षार्थी तार पांचटी लक्षण निहाती रहिबा आवश्यक शिक्षा लाभ समय रे आमे पांचटी जिनिष को भल भाव मन रखिबा काक चेष्टा काक कहिले कोन पिला माने बुझ काक कहिले आमे काउ बोली बुझ जे काउ तार उद्देश्य होला जे गोटे जिनिष को पाइबा पाई से बारंबार चेष्टा जारी रखिथाए तार चेष्टे से सफल न हवा पर्यंत से कार्य सफल न हवा पर्यंत से चेष्टा जारी

वेलकम बैक अगेन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक सहित अच्छा आपण म्यूजिकल हमसफर विश्वजित अच्छे आपण मान संगे वर्तमान आपण मान को शुणी दूची किसी ब्यूटिफुल नुआ ओडिया फिल्म र गीत एवं ता सहित अच्छे किसी एमती एवरग्रीन पुराणा गीत जहां आपण मन को पुणी रिफ्रेश करदब चलतु ताले शुणा रतिकांत शतपथी कंठ से प्रथम यही सुंदर गीतटी एवं एटी गुटे बहुत अंडर रेटेड गीत बोली मुझे कहबी आपति भाव में भल लगे रिसेंटली दुई वर्ष बर्षे तले रिलीज होता गोटे ओडिया चलचित्र चक्षु बंधन जहार ए सुंदर गीतटी बनी महांती कंपोजिशन गीत लिखी रजनी शतपथी

0: Welcome again to Incursion, the 100.4 Akashwani FM Brunbahu Kuchandi Dil Se Dil Tag Studio Ghantare Hei Jai Chi Aapan Man Ka Farmais Ko Purana Karibara Silsila Ko Start Karibara Time Mane Rainbow SMS Ko Start Karibara Time शीघ्र निजर फोन को उठात एस एम एस बक्स को जानतु आइप करसी लिखि दिखु कौ गीत को शुणापी चाहते आपत क्या डेडिकेट करने चाहते कौ चलचित्र से गीत कौ आलबम से गीत आउे निज ना ठिकना सहित पठे दिंतु आम नंबर 09495963210 व्हाट्सएप तेज नंबर हूँ 8895254200 आपण फरमाइज को पूरण कर सिलसिला को स्टार्ट करदे कारण अलरेडी आम कि श्रोता मैंने मेसेज कर सारी तबे फर्स्ट मेसेज जी आमे नौचे आज चंद्रकांत पुष्टि गोपपुर निश्चिंत कोइलीरू पठे से शुणापी चाहते गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी कायामत डेडिकेट कर सब श्रोता बंधु मानू गुड मॉर्निंग विश जनई समस्त को चंद्रकांत पृष्टि अनुरोध रे गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक उमा शानु अलका याग्निक कंठरे एवं परे परे आउ गोटे सुंदर गीत जहाँ को शुणापी चाहते अनेक जन श्रोता किए किए शुणापी चाहते ना लीजाराणी कल्याणी रश्मि सुरेखा मामी लता खटुआ मंगला बजार जेमादीपुर नुआपटना तिगिरिया कटकु एवं श्रोता बने डेडिकेट कर गीतटी को लक्ष्मीप्रिया रोजालीन दिव्यचंदन विश्वरंजन एवं बासंती माई एवं सब श्रोता बंधु मान गुड मॉर्निंग रवि सहित शुणापी चाहते तेजा फिल्म रू एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ब्यूटीफुल ट्रैक टी एवं तपन कुमार दास नुआपड़ा कटक रू शुणापी चाहते आउ गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक तुम मिले फिल्म रू केके वॉइस रे दिल्ली बादत ए ब्यूटीफुल ट्रैक गुड़ी का सहित स्टार्ट कर दबा रेनबो एसएमएस रे सिलसिला आपन माने शीघ्र शीघ्र फोन उठांतु आउ पठी दियंतु आपन कर फरमाइश आउ कहुतांतु दिल से दिल तक।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
1: एक कमबख्त दिल की गलती कर बैठता है और भुगतना आपको पड़ता है
2: तो भुगतो।

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जायथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जायछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: ये हेउची मो सानो भाई बहुत दुष्ट कॉलेज रे मार्कशीट फोटोशॉप करिकी बापांकू देखाउथिला खाली मु लाइट बिल रे जीरो अमाउंट देखिली तापरे भाबिली की निहाती एटा फोटोशॉप कराहिची नहले जीरो बिजुली बिल पॉसिबल केमिति पचारिली तो कहला
1: भाई सबु सही ऊपर वाला रा दया सोलर पैनल अछि ना
0: मु कहली ओ सेईटा सत कथा भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोडी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: शिखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

ए दिल से दिल तक सफर रे मु होछि मोनालिसा आपनक साथी रे गीत सुनिबा को हम समस्तन को बहुत भले लागे आउ से गीत छदी टिके एवरग्रीन थाय ना से गीत रे बहुत सारा मेमोरी थाए आउ से गीत आमी जेते बले सुनु हमरो बहुत कथा मन पड़ी जाय आउ आमी भावना भीतर पूरा पूरी डूबी जाओ कौन सती मो कथा सुनी आपणकर किछि कथा मन पड़ुछि कि आपण किछि भाभी कलेनी शायद तेबे सती आपणक भावना को टिके अटके मु सुनी दउछि हिंदी फिल्म रो किछिटा एवरग्रीन सॉन्ग खास औ खास आपण मनक पई तेबे पहुंचे दउछि सुनु थांतु आउ कहु थांतु दिल से दिल तक।

सो चलीचे किछी कथा किछी गीत आउ मु अछि मोनालिसा आपनक साथे रे तबे साथी केबे केबे आमे भाबु कथा हेउची शब्द भळी किंतु कथा हेउची मनर भाषा आउ गीत हेउची आम आत्मार सुर केबे केबे कहा कथा ओठरे हस आनी दिए तो आउ किछि कथा आम आखिरे लुह ठीक जेमती श्रावणर धारा भळी सतरे साथी कथार जादू अछि आउ ए जादू ही आमको केते बड़े कहा हृदयर एते पाख को नै जाए तो पुणी केबे केबे पीरहर यंत्रणा रे पूरा छटपट करे जीवन रे अनेक रंग किंतु प्रत्येक रंग पछरे गोटे कहानी लुची रहिथाय आउ सेई कथा जेते बले गीत सह मिसि जाय ना सेते बले तयारी हुए कुहुक माने जीवन रो मीठा सुरा

0: ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅ ହଜବେଣ୍ଡ ଜୀ।
1: ଇଏ ସୌଦାର 15,000, ପରିବାର 2,000।
0: ଆଉ ଲାଇଟ ବିଲ
1: ଏବେ ଜିରୋ ପଇସା କେମିତି ଦେବି?
0: ଓହୋ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ତ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗି ଯାଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଯୋଉ 4,000 ବଞ୍ଚିଲା ସେଥିରେ ସପିଂ କରାଯାଉ।
1: ନିଶ୍ଚୟ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ pmsuryaghar.gov.in।
2: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहां जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एथिपई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएमक निकटरे दाखल करंतु एवं तांगठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम

0: ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
0: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: अब बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
0: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: सबसे पहले

0: दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
1: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
1: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
1: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
1: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
1: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
1: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।

0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
1: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यवहार